मंगल दिन सेंट ट्रीन वन परफ्यूम लाइट फ्रेग्रेंस 35 वर्ष देखि राष्ट्रलाई जोड्दै नेपालस नम्बर वन एडहेसिभ ब्रांड राज्यको दस मजा लेता।

जाम राति धुमधाम राइट टपन नयाँ इभी मेरो दिया गोलीसँग लाइट छ सुपर फन. Elders love it, so do the young.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

धुमधाम साथी धुमधाम लाइफ छ फन नयाँ इभी मेरो दिया दिदीसँग लाइफ छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the fun, go.

राइटर रविन्द्र खत्री, सम्पर्क नम्बर 029560580, 99525160580 र 99421-08181। धृति स्टोर निर्माण होम डेकोर एन्ड सप्लायर, खाँदारी 1, सङ्खुवा सभा।